नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से, आरजे वेली की तरफ से, और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जो 100.7. दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, और कल रात की नींद भी आप सभी की अच्छी सी गई होगी, है ना? और आज आप सभी ने अच्छे से नींद ली होगी, और आज सुबह आप सभी ने बहुत ही खूबसूरत वाली मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत जरूर

की होगी. यस, आज की, इस दिन के सुबह की शुरुआत. यस. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने कामों में जाने के लिए आप रेडी हो चुके होंगे. यस, नहा धोकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लिए होंगे. और हम चाहते हैं कि दोस्तों आप सभी का दिन अच्छे से बीते, बहुत ही खुशियाँ और आनंद के साथ दोस्तों. और हम आपका साथ देंगे पूरे 3 बजे तक दोस्तों, ठीक है. और आप सभी को हमें संदेश भेजना है क्योंकि आप सभी के प्यार भरे संदेशों का हमें इंतज़ार रहेगा. और मैं चाहती हूँ कि आप हमसे बातें करें क्योंकि आप सभी का इंतज़ार इस FM 100.7 पर किया करते हैं. और आपकी दोस्त आरजे वियली तो हमेशा आपका इंतज़ार करती है, आपके संदेशों का. तो मेरे साथ आप सभी जुड़ जाइए फिर एक बार FM 100.7 के साथ दोस्तों, आरजे वियली के साथ हंसी मजाक प्यार भरी बातें करने के लिए. आप हाजिर हो जाइए, ठीक है. आप सभी का इंतज़ार रहेगा और आप सभी को मैं बहुत बहुत यस मिस कर रही हूँ. यस, आप सभी अपना ध्यान रखना और आप शायद अभी अपने कामों में जाने के लिए निकल चुके होंगे अपने घरों से. और सुबह के 9:30 बजने वाले हैं दोस्तों. और इस खंड में मैं आप सभी का साथ देने वाली हूँ पूरे 10 बजे तक, ठीक है. तो चलिए आइए हम अपने आज के इस हिंदी के सबसे पहले खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो है अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत आए हो मेरी जिंदगी में. बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों. इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान आते रहे कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही फूलों की तरह भर दे. तो चलिए फिलहाल सुनते हैं मेरी तरफ से अलका याग्निक जी के आवाज़ में गाया गीत आए हो मेरी ज़िंदगी में, मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी हमारे जिंदगी में एक बहार बन के आए हैं। आप जब आप हमारे साथ रहते हैं इस FM ZOY 100.7 पर दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके बिना ये FM ZOY बहुत ही अधूरा है। हमें कभी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आप सभी के प्यार भरे संदेशों का हमें इंतजार रहता है। आप सभी का हमें याद आती है, मतलब यस, आप सभी का याद आता है हमें। और जब आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम अकेलापन महसूस करते हैं दोस्तों। तो चलिए, इस गीत की तरह आप सभी की जिंदगी में ऐसे बहार आते रहे, बहुत ही अच्छे अच्छे इंसान आते रहे आपके जिंदगी में। तो चलिए, इस तरह हमारी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आरजे मामोई की तरफ से, आरजे नुंगनुंग की तरफ से और मेरी तरफ से। आप सभी को एक प्यार भरी शुभकामनाएं आज के लिए और आप सभी के आने वाले समय के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं चलना चाहूंगी आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ। और इस खंड में सबसे पहला संदेश मुझे भेजा है कुंगते ह्यान। Are you more VL? Can be in tong hat the aim. Ni etro. Can in tong let look let le donia o. Kum sa tam aliam nua can in tong let hey he can lom he may be in su I upo alo lang to ranga yang. The lights a go he a boil to cany o. A boil a little ka. Biak bob yang um low. Zang khak de ba hian archevil namaste ila play le tur kha kung te ya vi kung te ya jila zama ming moi te ya moya mun pui ela rama mit itan kala ne from ngak te pa rontini ole ngak te pa hi felt hin le mai this one durgesh ji ki taraf se sandesh aaya hai। Durgesh ji ne likha hai ki गुड मॉर्निंग आरजे वी एल जी। यस, मैंने आपका संदेश पढ़ के इसलिए मुझे हंसी आया क्योंकि जैसा आपने जिस तरह आपने मेरी ये नाम का स्पेलिंग लिखा है ना, वो बहुत ही स्वीट है। यस, वी एल, ठीक है, वी एल। और दुर्गेश जी ने एक गीत फरमाइश की है, वो है मैंने प्यार किया दिल दीवाना। यस, अगर हमारे पास समय होगा और मुझे ये गीत मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट में तो मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगी दुर्गेश जी, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना है, ठीक है। यस, हमारे पास पूरे 10 बजे तक का समय है, इसलिए आपको इंतजार करना है। इंतजार का फल मीठा होता है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो इंतजार कीजिए। और मेरे दोस्त जिला जाम की तरफ से संदेश आया है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। और जामहियान यस का बांधिर कौ नहीं लो आज भी एल नमस्ते सुप्रभा दरंतिया ओ नंग पोले ओ जाम लुतुक छीन से ओ एम एम से तुमकार जो इरे रे लुतुका कंगाई टॉप से भी एल कंगाई से लोम जाम के पोन मो मानी बुआई हन कन बुआई तांग कन बुआई तांग तिरो कोवेल ही जोंग बुआई था कनी ही कंगाई लुटुक चे मासे का थे गिल गाई लौ चे ओ कलो शरंग छिन चे जान का ओटीपी अपो बुआई एम एम मा इला का शरंग थौनी ओ कुंते शामो इवन रे रे तक रंती आ नी एत्रो चौन नेक्स्ट सॉन्ग इतान ले कंट्रोल रूम ड्यूटी ले ड्यूटी ऑफिसर तान ले उचे पिया मोर्जा तो पा मई लबिन वी एल वो इन ड्यूटी नाम उले रोंदिया ओले जाम कलोम लो तुके ओ बहुत बहुत शुक्रिया जाम आपके प्यार भरे संदेश के लिए। इसी संदेश के लिए तो हम तरसते हैं। यस, आपको मतलब जाम तरसते हैं त्योम जय शायम कलोम हालिल एम एम मो। तो लेकिन हम जिस संदेश का बेसब्री से इंतजार करते हैं आज शायद आएगा या नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकती।
चलिए हम इंतजार करेंगे। यस, जैसे कि हमने कहा था कि इंतजार का फल मीठा होता है, उसी की तरह हम भी इंतजार करेंगे उस स्पेशल संदेश का। चन एलारामा मित पो एलारहियान आरजेवीएल लथर ओ कार्थर सिबाई ड्यूटी नोमले रोंती आ ओले ओ लथर ती जोंग ओ लथर लथर सिबाई ड्यूटी नोमले ओ इजाइटी टूर अवाय खान इतान ले गाय लतु तेतान ओ रोंती आ पो एलारहियान कलोम लुतुके ओ चन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए। और चलिए इस तरह हम प्यार भरी बातें करते रहेंगे और हंसी मजाक के साथ यूं ही वक्त दिन समय बिताएंगे आरजे वीएलए के साथ। तो आइए मेरे साथ हिंदी के खंड में, हिंदी के संगीत की दुनिया में डूब जाइए। और मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप सभी का समय दिन अच्छे से बीता रहे। तो आइए आज की सुबह आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ भी शुरुआत की होगी। तो आइए आपके इस समय को और भी हसीन बनाते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो है मेरा दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत, मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरा दिल भी कितना पागल है। यस, कभी कभी ना मैं भी सोचती हूँ कि मेरा दिल इतना पागल क्यों है जो मेरे बारे में जो कोई सोचता नहीं है, मैं उनके बारे में क्यों सोचती हूँ कभी कभी मतलब दिल पागल सा हो जाता है, क्या करे तो खैर चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को गीत पसंद आया होगा, और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए मतलब पूरे रेडी हो चुके होंगे, और शायद आप जा भी रहे होंगे, रास्ते पर होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अच्छे से सावधानी से चलाइएगा, ठीक है? हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो जाए, ठीक है? ये छोटी सी जिंदगी में मतलब आपको कोई गम ना आए, आपको कोई मुसीबत ना आए, हम यही चाहते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस तरह हमारा आप सभी के लिए हमेशा, यस, हम आपके लिए दुआ करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी का समय, दिन, ये जिंदगी अच्छे से चलती रहे, वो भी एफएम जॉय के साथ। यस, तो चलिए यहाँ पर मैं चलना चाहूंगी आपके संदेश की तरफ। मेरे दोस्त विपिन की तरफ से संदेश आया है, और विपिन के साथ भी बहुत दिनों के बाद बातचीत हुई है दोनों इतने बिजी हैं तो क्या करें वो बिजी है अपने लाइफ में, अपने वाइफ के साथ, अपने कामों के साथ और मैं भी बिजी हूँ अपने लाइफ के साथ, अपने छोटे से लाइफ के साथ। तो आप भी इसी तरह बिजी होंगे अपने अपने लाइफ में। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बिजी लाइफ में ना आप ये मत भूलना कि कोई आपको मिस करते हैं, ठीक है? तो विपिन लिखते हैं कि अजय भी नमस्ते, आपको भी नमस्ते विपिन, कैसे हैं आप? और लीली कैसी है? और कलोंगा ठवेरेगा कमिसेज मन भी लवा हरोंती ओले ओले, बहुत बहुत शुक्रिया इसी संदेश के लिए भी, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त विपिन। और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन अच्छे से बीते, आप अच्छे से काम करते रहें, और हमेशा प्यार अपने नीली के साथ बरसाते रहिएगा, ठीक है? और कुछ थोड़ा सा भी हमारे लिए बचा के रखिएगा क्योंकि हम भी आपको मिस करते हैं, और स्पेशली जब मैं एफएम 100.7 पर हाजिर रहती हूँ आप सभी के लिए, तो उस वक्त के लिए मेरे लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी यादें बचा के रखना, ठीक है? और कोंगते हियान जोकर जा मजारा वी एल ती लॉन्ग फॉर्म का शिक्षा ती लॉन्ग फॉर्म का शिक्षा वांटिर का उठा नहीं लाओ ती ना लो निया मासे वांटिर का इन लाओ ती शेरिंग चुंगा नी अंगा अरोन सोई चही इन फक मोई ना आई माइन तिरस्कार ची खता कंगाई तिरस्कार ची खता कंगाई के सही दिखते रो तिरस्कार तिलाई तकिसु कैसे चांग लवा बांतिर कौठा नहीं लाउती ते चुएंगे तिरस्कार नी ना एमएम तोर कुमते बांतिर कौ खाठा नहीं लाउ खाकर नी मैया तिरोजाम कुंग ते ही चुआ वो इन चुकन से सशेप दोन मसे मिन रेसन नंग ती चुक लाव ले मैं। तो चलिए फिलहाल इस तरह जब आप सभी से बातें करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही आनंद मिलता है, और हम मतलब जैसा कि मैंने कहा था कि आप सभी के प्यार भरे संदेशों का हमें इंतजार रहता है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। एफ एम सो ओ जब तक रहेगा, ये एफ एम सो ओ 100.7 जब तक रहेगा ना दोस्तों, आप हमारे दिल में रहोगे जिंदगी भर। यस, मतलब जब तक एफ एम सो 100.7 तो चलती रहेगी,
मेरा कहने का मतलब है कि ये तो चलता रहेगा, वो मतलब जिंदगी भर। तो हमें मत भूलना, आप सभी के संदेश का इंतजार रहता है हमेशा। यस, और इस तरह एक दूसरे के साथ बातें करना शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप सभी का समय अच्छे से चलता रहे। आइए गीत की तरफ चलते हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक के ही आवाज में गाया गीत पहली पहली बार मोहब्बत की है मेरी तरफ से। ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के नाम, और आप सभी मतलब अपने काम के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि जा रहे होंगे, सही सलामत जाना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, और ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। यस, जी हाँ, बिल्कुल। जब पहली पहली बार मोहब्बत होती है तो हम हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। और हम बहुत ही उत्सुक रहते हैं उनसे मिलने के लिए उनसे बातें करने के लिए। एक संदेश भी आ जाए तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जी हाँ दोस्तों, जब आपको भी पहली पहली बार किसी से मोहब्बत हुई होगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। यस तो चलिए, लेकिन ना दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर जब पहली पहली बार हम मोहब्बत करते हैं किसी से और वो पहला प्यार अगर अधूरा पड़ जाता है तो हम जिंदगी भर उस प्यार को भुला नहीं पाते हैं, है ना। और वो बहुत स्पेशल होता है। पहली वो पहला वाला प्यार जो अधूरा पड़ जाता है वो बहुत स्पेशल होता है। उनके जाने के बाद भी उनके साथ ना होने पर भी बहुत ही सुकून मिलता है ना दोस्तों। और जो बस मैं तो चाहती हूँ कि आपका प्यार कभी भी अधूरा ना हो किसी के मोहब्बत की तरह। और मेरे दोस्त विपिन लिखते हैं कि आज जब भी वो इन ऑफिस आ रेडियो का किंग टॉप इनमें मुझे फोटो भेजना, ठीक है। इस सेगमेंट अलग लो देवा, इस सेगमेंट लग लो देवा हनकल सन का थई बुक सी लाओ। अच्छा ये सब मतलब ये ऐसा ऐसा बातें बनाना कहाँ से सीखा आपने? लीली ने सिखाया है या किसी और ने? ऑलराइट, लेके जाइए जरूर। लेकिन मैं मतलब मुझे ये डर है कि अगर आप रेडियो लेके जाएंगे साथ तो काम नहीं कर पाओगे, तो आपके मतलब आपके दोस्त क्या कहेंगे आपको। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त विपिन, आपके इस प्यार भरे संदेश ने हमें हंसाया। इस संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दोस्त जामे की तरफ से दोबारा संदेश आया है। जामे नाजेवियल इमो विपिन नखा एंग तिंगे इसक में आ हियान मैसेज और अथन अथन दुबी का मिदंग सेगमेंट आ पो लो लंग थाउ से कती ए सेगमेंट आ लो इन लाठिन ही शेथियाम थे लो लाओ। अमा खा बजोत मे रोजाम तिंगे वियली सेगमेंट आ चे इलन थीन ती खान बजोत टॉप मे रो। और यस, कितना अच्छा लगता है आप सभी का साथ देते हुए, हमें हंसाते हुए। इस तरह जब आप हमें इतना हंसाते हैं तो आपको भी मतलब आपको भी हमें छोड़ने का मन नहीं करता है। आप हमारे दिल के इतने करीब हो चुके हैं आप सभी, तो इसलिए आप सभी से मतलब आप सभी को हाँ छोड़ने का मन भी नहीं करता है। बस यूं ही बातें करते रहे, गीत सुनते रहे, काश ऐसा होता है ना। मैं मोई देखें वाला नमस्ते ड्यूटी नामले रंती बोकनी ओले। तो चलिए, दुर्गेश जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी ना दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर, आपके फरमाइश गीत ना मैं आपके लिए जरूर सुनाऊंगी, ठीक है। मुझे मिल गया है, लेकिन मैं ये गीत इस गीत के साथ में आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ, इसलिए अगले खंड में आपका फरमाइश गीत हम जरूर सुनेंगे, ठीक है। मैंने कहा था ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो आप इंतजार करते रहिए। आपका इंतजार का फल ना इतना मीठा होगा ना आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। उसी तरह हमें भी जिंदगी में इंतजार करना है, इंतजार करना है। आप इंतजार कीजिए सही वक्त का, सही समय का। जब तक आप इंतजार करेंगे ना, आपको
जिंदगी में मतलब कठिनाई तो आएगी, लेकिन जब तक आप पेशेंट रखेंगे, पेशेंट के साथ इंतजार करते रहेंगे उस वक्त का, उस सही समय का, आपका आपका जो इंतजार है ना दोस्तों, बहुत मीठा होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए, फिलहाल आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय खत्म हो गया है। कछुआ दोन वाया पुवाला ओ उवाला लेक कछियान पा कुंगते हियन रुन लंगा कंचार लुक त्यांग कुंगते हियन जेल जामती मिंग पु हिचु चोंग श्याद लविन रेल शेप मई टूर तिरो रोन ति वेलेनी सो कुंगते हियन रोन ngam sok sok khle mai mo kungte hian o ka om hi mo zamatan ka om hi sha em kungte zan etin pon lau ti la aj veli om chung hi chuan wo in ne don chuang lo ke wa la hian aj ubl edu ti lau hian ka ler sot lat sai chan om lau te ron ti vel अले अपैल है नेम लेर चो लेर तुर कति खा माय रो छु कति खा ओ बाउंड्री का क्रॉस लो तुर अले। तो चलिए, फिलहाल आप सभी को प्यार भरे संदेश के लिए मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और दोस्तों, अलविदा तो कहना नहीं चाहते, लेकिन कहना पड़ रहा है इस खंड के लिए, केवल इस खंड के लिए मैं आपको छोड़ के जाऊंगी और मैं जल्दी वापस आऊंगी, क्योंकि समय तो जल्दी जल्दी चला जाता ही है। इसलिए मैं जल्दी वापस आऊंगी 11:20 पर। आप सभी मेरा इंतजार करेंगे ना, आप सभी मुझे सुनेंगे ना और आप सभी मुझसे बातें करेंगे ना दोस्तों। यस, तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए पेश करना चाहूंगी। बारिश में तुम, नेहा कक्कर और रोहन प्रीत के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत। और तो चलिए, आप अपना ख्याल रखना दोस्तों, ठीक है। तो आज वीली की तरफ से ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम और उठी पी अपो स्मार्ट दो इन हैंडसम दो इन ऑफिस तो थैंक तो तुरा बेस से इला। तो ये गीत उनके लिए भी और आप सभी के लिए दोस्तों।

हेलो नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजेवीली की तरफ से और आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोबारा हिंदी के खंड पे दोस्तों। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं दोस्तों एफएम सोय, यस आकाशवाणी आइजोल एफएम सोय 100.7 दोस्तों, यस। और आप सभी अपने अपने काम शुरुआत यस अपने अपने काम की शुरुआत कर चुके होंगे और कर रहे होंगे अपने काम अभी इस समय और शायद आप लेटे लेटे आराम करते हुए, बैठते हुए, कुछ खाते हुए हमें सुन रहे होंगे, है ना? यस। तो चलिए, मैं हाजिर हूँ इस खंड में, हिंदी के खंड में, हिंदी के खंड के साथ आप सभी की दोस्त आरजे वियली। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ दोबारा आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर अच्छा लगेगा, आप सभी को पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से, और हमारा पूरा समय 12 बजे तक का है दोस्तों। पता नहीं आज क्यों समय इतना जल्दी चला जा रहा है। खैर, जो भी हो दोस्तों, समय बहुत कीमती है, तो अपने समय को अच्छे से सही तरीके से निभाइए, करिए दोस्तों अपना काम, अपने अपने काम। आप जहाँ पर भी होंगे, आप जहाँ पर भी जाएंगे, कहीं पर भी जा रहे हैं, बस अपना ख्याल रखना और अपने समय को अच्छे से बिताने के लिए कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल बातें तो हम करते रहेंगे और मैं आप सभी के प्यार भरे संदेश का इंतजार करूंगी। तो चलिए सुनते हैं बारिश में तुम, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से, यह स्नेहा कक्कर और रोहन प्रीत के आवाज में गाया गीत बारिश में तुम से मैं इस खंड की शुरुआत करना चाहूंगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए आइए सुनते हैं मेरी तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी के नाम।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत दोस्तों नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की आवाज में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत बारिश में तुम। यस, मुझको बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम। यस, कितना प्यारा गीत है ना दोस्तों। यस, इस गीत को सुनकर ये एहसास होता है कि जब दो दिलों की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत से होती है तो कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। यस, और इसी तरह आपका और हमारा प्यार भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्यारा हो दोस्तों, हम यही चाहते हैं। इसलिए हम आपको बहुत ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें मत भूलिएगा संदेश भेजना और हमें सुनना दोस्तों। यस, क्योंकि हम आपका इंतजार करते हैं इस FM Zoy 100.7 पर दोस्तों। ठीक है, और हिंदी के खंड पे आपका साथ दे रही है आप सभी की दोस्त RJ वियली दोस्तों। तो आइए अगले खंड नहीं दोस्तों, अगले गीत की तरफ चलते हैं। लेकिन आपके लिए गीत सुनाने से पहले मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ। और संदेश आया है कुंगतेया और मिंगमोयतेया की तरफ से। और मिंगमोयतेया वाला कलो में अरोन्ती आ ओ ओले इलोम चंचुकशिया। हमने आपका जो मनपसंदी गीत मेरा दिल भी कितना पागल है वो सुनाया था ना। यस, तो और कुंग ते हियन आज मो वेल वो इना कंड्यूटी फिल ले मेल छा उरिन एंग तान लियाओ लियाओ करन थंग ओ अरन त्यानी ओले कन दियो उरिन एंग खान लो श्यांग एम ओ अश्या अश्य लो नी चुआन निकिना कन शिलंग तुना खान उरिन एंग खा अनुई वुर अनुई अनुई वुर वुर एम ओ anui lo chuan lo nui lo nui deuh sak se a chan chu kan mi special mm kung te an la aron thlan sak hetia la thlan sak te hi o kan chak ve thin ani mo kung te तो चलिए फिलहाल सुनते हैं केसरिया, बहुत ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कलिम कलिम वेंग वेंग निंग बेरिंग कशिया ओ विपिन खान मिलो फि अलो ओ अफियाम थो मो कलौथिया tinge lo ti kha when to office a radio ka king top is segment alak lo dewa han kal san ka thei boxi lo ati vel kha aron fiam tu me me mo ka tia ma se video ne top oh a king lai no oh a step a kal kong a king lai nge mai kha video khan aron la a mi ron thon nge ni zumo अब चमेले लाई थे इन प्ले चार चार ओ लिवन लिवन चिंता गेम। तो चलिए फिलहाल दोस्तों मेरी तरफ से ये बहुत ही प्यारा सा गीत केसरिया मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। तो चलिए आप भी मेरी तरह खुश होंगे है ना। यस, अगर आप खुश नहीं है तो बस आप खुश होने के लिए कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इस छोटे से पल को बहुत ही अच्छे तरीके से आप गुजारने के लिए बिताने के लिए कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि आप गुमसुम हो, मायूस हो, उदास हो दोस्तों। हंसिए, मुस्कुराइए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत मेरी तरफ से केसरिया आप सभी के नाम और स्पेशली मेरे दोस्त विकुंगते थे मिंगमोयते थे और विपिन के लिए भी।

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को राधा लंबिया गीत, यस जुबिन नोटियाल और आसिस कौर के आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और स्पेशली मेरे दोस्त जो इस गीत को बहुत ही पसंद करते हैं, मेरे दोस्त जामा को जरूर पसंद आया होगा, उन और उनके साथ साथ उनके दोस्त पुजाइमा और पुसमू जी को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आइए, अब मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ, और संदेश है कुंगते अहियान वही जायथियाम चुआथेलाउ पील एन कोली पाउतु तानी पोईमो तकनी आमा फैंस ग्रुप आमाइसांग तुटेन अमा फैंस ग्रुप आमाइसांग तुटेन कन विश मोल मोल जेला ग्रुप मेम्बर पुदम पचुआउले पी मंगई तेहि अबीक तकिन कन खन सक अंगे इपेले तुर्खा अनपनी तान ओ रोनती कुंते हियान फेल छीन निया तुंगते हामे लन सक बेला मो प्लीज चाहक उठी पी पोखा लन सक बेला विपिन बो लन सक बेला तीन जाम पो वाल कल ओ कल ओमे अरोनती ओले मिंग मोते बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, और जाम अहियान आरजीबीएल फ्राइडे आरोन ड्यूटी ले थैला कती ए अचन ले मांग चु इशी आद खा का ड्यूटी दोन लाओ का हेल जेल दोन हुन रे तक तो अचंगा का लो खाक लेल एम एम खा आरजीबीएल कर्मसा फ्राइडे खान का दू थु साम चु थेंग तो आ का दू थु साम चु थेंग तो आ एंग एंग नी एंगे एंगे एम नेक्स्ट सॉन्ग वी कुंग लेर था वी कुंग कोप्लोर थिया मतल लवीन विपिन ले उन इन पथुम तान चौ यस कल थो खुंग जिंग मीरा तलम्बी अमीन लुई लेता जम कहे जेल दोन के तीखा ओ इफलंगे मो स्वान हितेंद्र दास जी की तरफ से गुड मॉर्निंग आर जे जी। यस, हमारा गुड मॉर्निंग ना खत्म होने वाला है हितेंद्र दास जी, आप बहुत लेट होने वाले हैं, ठीक है आप बहुत लेट हैं, ठीक है 12 बजने वाला है और आप अभी मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, पर कोई बात नहीं, देर से किया तो किया ना यस तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे दोस्तों को। ऑफिस लमाते न थो पाते मिलऊंगा चिंती कन हन शत ख्यान अब हन नुआम चिंतक एम ओ तीन सत्यांग बुकिन। आप जहां पर भी रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, हमें मालूम है कि आप हमें सुनते हैं अपने काम करने के साथ, यह साथ साथ आप हमें सुनते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह आप सभी का प्यार सपोर्ट हमारे हौसलों को बढ़ाता है। तो आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए, और हम भी कोशिश करेंगे आपको हमेशा जिंदगी भर यूं ही हंसाते रहें दोस्तों। यस, हम चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराएं, हंसे, खुश रहे दोस्तों अपनी जिंदगी में। तो चलिए, कभी अपने जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, जो है उसी में आप खुश रहने के लिए कोशिश कीजिए। तो हम भी कर रहे हैं, तो आप भी करते जाइएगा। तो अगला गीत सुनते हैं, जिंदगी कुछ तो बता, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जुबिन नौटियाल की आवाज में गाया कि जिंदगी कुछ तो बता। कभी कभी हम जिंदगी से ये सवाल पूछते हैं, ये जिंदगी से ये सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। और बहुत ही ढेर सारे सवाल हमारे पास जिंदगी के लिए हैं, लेकिन वो सवाल, मतलब हमारे सवालों का जवाब जिंदगी कभी हमें देती भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम खुश हैं जिंदगी से, हम नाराज नहीं हैं जिंदगी से। और आप भी नाराज मत होना जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी आपके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने सोच के रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मेरे दोस्त जा महियान कपालते ओला उमाई फाकर फाकर वे लव दूर देने चन अले चाकुंते ह्या नंग ले उ चाव करोन थन सकंग चे उ अब नुआम ले सीएम में कहूं जिला जा मचू अबू हेर कॉल अरिंग थे सी कितन सक दोन लव रेंग रेंग अरंत्या नी स्वाले में ओ चान एलारामा एलारा ओ पु एलारामा मिथियान आरजेवीएल आहार लेजी हल्लो तेन मंगाई न लमक्लुआंग जो जो टॉप दून जो टॉप दून जो टॉप जो टॉप दून कनुआम नून पार अंगबुल दोन सी आ दिल का रिश्ता गाय शाइला कन पनीतान यस कन गाय समन तुरा गाय अंग ओ जो टॉप दून कनुआम ओ मोई थिन बॉक्सी आ अच्छा दुनु ही अच्छा दुनु ही ओ जे बॉक्सी लवा क्या करूं मैं क्या करूं मैं। तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुएलार आपके संदेश के लिए। और तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और आप हमें इतना इतने खुश कर देते हैं कि हम इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या करें। यस ओवर एक्साइटेड कर सो पोई मो एमे मनी दरो। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं तेरे बिन मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का समय दिन अच्छे से चल रहा होगा ना, और आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए करते रहिए अपने काम और सुनते हैं ये गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तेरे बिन कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, है ना? है कि नहीं? यस और नो, आप बताइए हमें सब अपने संदेश के जरिए। और वैसे भी दोस्तों, हमारा समय खत्म होने वाला है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। और यहाँ पर मेरे दोस्त महियान आरजेबी उएला रखा निचियार अतान अमसेज ही अदु कदु आ ये न रोंथन मामा इचियार थियामु तुगरिंगो उएला रखा रोन दिजे रोसे रोन दिया ती तो लवांग रोंथन तो लवांग chuan thuan tawh oi lo ka tiang el bi rent la yan rgb lo lang ve man sha me bo in ni man nuam le ron tia o le nang po le o el bi rent lai kan lom chin le mai inui ri le i o no sha ti a ban nuam e me play le tur kha italia o le o ron ti ni e min fak na o ka hi chu kan lom chin te e o बहुत बहुत शुक्रिया एल बी रंथे आपके संदेश के लिए, आपके तारीफों के लिए। कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों, जब हम एक दूसरे का एक दूसरे की यस तारीफ करते हैं, उन्हें मतलब उनकी तारीफ करते हैं। किसी की भी तारीफ करेंगे वो इंसान खुश होगा, अगर उन मतलब किसी की बुराई करेंगे तो वो खुश होगा नहीं। तो इसलिए एक दूसरे की तारीफ करते रहिए। अगर आप किसी की तारीफ करेंगे ना, तो आपको भी कोई जरूर तारीफ करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिलहाल सुनते हैं बहारा मेरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत गीत, सुनते हैं आप सभी के नाम।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ इस खंड में, इस खंड का पूरा गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और अभी हमारा समय खत्म होने वाला है, केवल ओनली 2 मिनट्स रह गए हैं, दो मिनट है। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, आप सभी को फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और मैं वापस आऊंगी दोबारा 2:35 पर, ठीक है? और फन डोंट खोप मई मो। तो चलिए, इस तरह आप सभी हमारा साथ देते रहे ना। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीतता रहे, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे से समय बीतता रहे आप सभी का। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, मांगी हुई चीज़ कभी अपनी नहीं होती, ना वक्त, ना रिश्ता, ना शख्स, ना प्यार। इसलिए किसी से भी प्यार तो बिल्कुल मत मांगिएगा, ठीक है? मंगाई ना फे चू दिल रेंग रेंग सु इंताना मंगाई ना कचू अरुण खेंग दोन थाउ थाउ मो। तो चलिए, फिलहाल इस आखिरी गीत के साथ मुझे इजाजत दीजिए। यस, और मिलते हैं 2:35 पर। और तब तक के लिए आरजे वीली की तरफ से इस खंड के लिए, केवल इस खंड के लिए, बाय बाय, टेक केयर, बेकू ओ। और अच्छे से अपने समय बिताते रहना और अच्छे से काम करते रहना, ठीक है?

हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेली की तरफ से और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम ज़ोल 100.7 और हिंदी के खंड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। यस और आप सभी का दिन कैसे बीता मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मुझे भी तो बताइए कि आप सभी का दिन कैसे बीता और आपका समय कैसे चल रहा है और आप सभी ठीक होंगे ना। तो आप कहीं पर भी रहेंगे, जहां पर भी हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी सही सलामत होंगे, आप ठीक होंगे और आप अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे और कर पा भी रहे होंगे। ठीक है, तो अपने सेहत का ध्यान रखते हुए आप सभी अपने अपने काम जरूरतों के काम करते रहिए। तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं आज के हमारे आखिरी खंड का, जैसे कि मैंने कहा था आप सभी से कि मैं वापस आऊंगी दोबारा 2:35 पर। तो उसी तरह मैंने तो अपना वादा पूरा किया, मैं हाजिर हुई आप सभी के लिए 2:35 पर पूरे 3 बजे तक। तो इसी तरह अगर आप किसी से वादा करते हैं तो उसको निभाने के लिए ना आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगर जो आप किसी से वादा करते हैं ना उसे पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर जो आप पूरा नहीं कर पाते, अगर आप जिससे भी वादा करेंगे अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे ना तो आप किसी से वादा मत कीजिए। ठीक है। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं शाम भी खूब है महबूब साथ है मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के लिए, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, जो मैंने पेश किया था, शाम भी खूब है, महबूब साथ है। यस, और उसी की तरह आप भी, जब मैं FM 100.7 पर आपके लिए हाजिर होती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा समय बहुत ही अच्छे से बीतता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शाम भी खूब है, महबूब साथ है। जब महबूब साथ हो, अच्छे दोस्त साथ हो, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो चलिए, फिलहाल हम अगले गीत की तरफ चलते हैं, लेकिन अगले गीत की तरफ चलने से पहले मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे के संदेश की तरफ। और अलजत साइलो की तरफ से संदेश आया है, अलजत साइलो ह्यान कवतों खात से वे ललवान रुंती आ निए तुल्ला ही दिवती ही अखात ले देवा तिन के गए ते ह्यान वेन सु कनाओ के कनाओ का चोय ओम चलाओ से आ अपोई कति है मैं इलिम इनुरी शाते ही नुआम तेलु नेन कदु अप्या कदु ओ कदु अंगिन का चोय ओम चलाओ से आ मिंगाई दम्रो ओ अतो प्ले निन कलो ngai थारे ngang che ron ti bo ka ni ta chin the mai ke ngai te aapke liye aapke sandesh ke liye bahut bahut shukriya aur ke oh kung te hian आज हम वीर मिसवाल जी दल जामले मिनी मिनी ख्वालाओ कपू के वाला दिखान अंती दो दा चे अनि चुआन लो सोई शे सु ओ ISIS ते कम रमतान कन लान दो निया अरुंती नी के गई ते यान चो जाम के वाल इन लो श्यामो Chuan LD ren LD sha sel hian RJVL segment top don ta reng mai nia he hun hi kal sak lu tu ka boy thak moi deu deu kha lo play la twang de wa twang deu kha ni ho don nia bye bye phot mai le ron ti ni ole nang po bye bye le o Chuan ka chan pa zama message ron thenga lekhin main ka sandesh is agle git ke सुनाने के बाद मैं पढ़ना चाहूंगी, ठीक है? जाम थोड़ा इंतजार करना। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आपको, तन्हाई तन्हाई। यस, तन्हाई तन्हाई। ये तन्हाई भी क्या चीज है? और ये तन्हाई ना दोस्तों, आपको, आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं उम्मीद करती हूँ और करती रहूंगी। तो चलिए, ये तन्हाई किसी को दूर ना करे, बस पास ही ले आए, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तन्हाई तन्हाई गीत जरूर पसंद आया होगा और इस तन्हाई ने हम सबको एक दूसरे के करीब मिला दिया होगा, है ना? यस. तो उसी तरह आपके संदेश भी पहुंच गए हैं मेरे दोस्तों, और संदेश आया है जामा और जामते के वालते कुंगते मोरीसिलार ख्यांगते भी हाजिर हुए हैं. तो मैंने कहा था ना कि ये तन्हाई ना एक दूसरे को साथ मिलाती है, ये नहीं है कि उनको दूर लेके जाती है. तो चलिए फिलहाल जिनल सामहियान अर्जवियल नमस्ते, गुड आफ्टरनून. यस जाम नंगपो गुड आफ्टरनून, ओ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. वियल बो इन ही लसी ख्वा अंग मई इन हुन ही अवन लियाम चक तक एम ओ निया लियाम चक लु तुक जाम अब मक तोप. चुआन इसक मेन हन तोप मई तुर चु अवन उई कवन उई सी एम फ्राइडे चु ड्यूटी चु थलत अंग से ओ. Next song itan so trying to get ho I hodonia rondia tereng mai zam zu lam bang bo ni lao ge ma zu ni ne ma ya ma se ge zam le ta ta ni zu mo zam ge ma la hian u bi el tu ma ke ti du dang ai lao ti ro ge ngai te ya Enge kong te hian enge ke ngai te a ron ti a am ha hi ron hup le nga la enge om ziao ka man ta lau ta ni chuan Maurice kyang te hian good afternoon miss RJ. Yes, aap ko bhi good afternoon Maurice, how are you? I hun tam zo karon lang man ta si lawa duty line iduti laya ron lan lo top chu dik thein ka sha si lawa in in tha shung takin garon lut be zo ye chuan i play le tur zong zong zo fm ngai la tu te tan le i play le tur zong zong zo o fm ngai la tu te tan ka than ve ke message a sei lu tuk don lats du talk pots mayang o rontia nu tok pots mayang o twang ta kan zem ho bo kleng tu rin de sekna sang re kan bo ke se rontia ni long drive kan ni le maya tro morris anon beng beng chin na sin to filhal dosto चलिए फिलहाल मैं गीत की तरफ चलना चाहूंगी. वैसे भी हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है और मैं सुनाना चाहूंगी दोबारा रोहनप्रीत और नेहा कक्कर के बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया गीत बारिश में तुम मेरी तरफ से आप सभी के लिए. और शायद हमें यस मेरे दोस्त मेरे बहुत ही लवली दोस्त उची पियते विपिन ते और कोई मतलब इन सवाई खान कलम लो ते पो खा मुझे सुन रहे होंगे. आप जहां पर भी होंगे आप सभी अच्छे से अपना काम करते रहे ना, ठीक है? और थोड़ा सा समय मेरे लिए भी बचा के रखना. थोड़ा सा अपने दिल को मेरी तरफ थोड़ा खींचना आरजेवीएली को याद करते हुए. तो चलिए मैं आपको ये गीत सुनाना चाहूंगी बारिश में तुम मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, क्या करें। समय की पाबंदी के कारण हमें आपसे जुदा होना पड़ता है और जुदा होने का समय आ चुका है। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा यूं ही हंसते रहें, वो भी आरजे वेली के साथ ही नहीं, अपने पूरे दोस्तों के साथ, अपने आप जहाँ पर भी वक्त गुजारते हैं वहाँ पर आप हमेशा खुश रहें। आपका समय दिन हमेशा अच्छा हो दोस्तों, और आप अपने काम में इतनी तरक्की करें, आपको हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ फॉलो करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज जिन्होंने भी मुझे संदेश भेजे, मेरा साथ दिया, उन सभी दोस्तों के लिए मैं दिल से उन सभी को शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी दोस्तों। और बस मैं चाहती हूं कि आप जिंदगी में हमेशा खुश रहे दोस्तों, आप अच्छा काम करें और आप एक अच्छा इंसान बने, है ना दोस्तों। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस दुनिया में। अगर हम अच्छा इंसान नहीं होंगे तो हमारे लिए दोस्त भी बहुत कम होंगे, ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं। यस, और तो चलिए हमारा समय भी ख़त्म होने वाला है। यस, तो मिलते हैं जल्दी से, है ना। जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। Yes, naktu ka po kanin tong mai thenya o zam. Zan message ka ron chiar do lau mai yang o ka lau mu ve ka. O zan ti dik lau te ka lau nei ni zan mi lau ngai dam sharp sham don nya o kung te. Zan ti la rim mo ya hian miss zan pa ya zheng lau ngai tha. Lau ngai tha o ron ti bo ka. Gan dan lom. To chaliye filhal aap sabhi ko aaj vele ki taraf se bye bye. Take care ve ku o. और हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों। और ये आखिरी गीत मेरी तरफ से दोबारा आप सभी के नाम, और उठी भी आपो नथो पाई मिलो करिंग वे था, लेकिन अगर नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन उन्हीं उनके लिए ये गीत मैं पेश करना चाहूंगी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत आप सभी के नाम, और बाय बाय से कैबे को ओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देशभर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल गए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन JRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि JRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया है। इनमें ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े धान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India Initiative has redefined governance, empowered citizens, and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact, and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. Increased wages under the Viksit Bharat Ji Ram Ji Act 2025 have become effective across the country from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said, for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. President Draupadi Murmu today called upon the youth to pursue excellence with dedication, integrity and strong ethical values to help realize the vision of a developed Bharat by 2047. Addressing the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapur as the chief guest, the president said the energy, talent and commitment of the young people will play a decisive role in building an inclusive and prosperous nation.
5: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
4: Newly appointed Chief of Army Staff General Dheeraj Seth has stressed the need to advance the modernization of the Army to tackle the challenges of the evolving security environment. Addressing the media today after assuming charge as the 31st Chief of Army Staff, General Seth highlighted that the Indian Army's objective is to build a technology-enabled future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains. The latest passport application hike fee has been implemented under the Passports Amendment Rules 2026 from today. Under the revised fee structure, a 36-page fresh passport or reissue of a passport will now cost 2,500 rupees. The fee for a 60-page ordinary passport or its reissue has now been fixed at 3,500 rupees, while under the Tatkal scheme, it will cost 6,000 rupees. Goods and Services Tax GST has strengthened India's vision of Ek Bharat Shreshth Bharat of the past 9 years. We now take you live to media briefing where Union Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav is informing about cabinet decisions.
6: Overall, Sathiyo, NDA 3, Mane Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ke is रेलवे के मेट्रो के और इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिए गए हैं समरी में देखें तो 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स 260,000 करोड़ के 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 370,000 करोड़ के 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1.5 लाख करोड़ के 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम 37,000 करोड़ फिर वाडवन पोर्ट और शिप रिपेयर फैसिलिटी शिपिंग के रिफॉर्म्स मिला के 1.5 लाख करोड़ करीब रोपवेज उसके बाद में हाइड्रो पावर फिर इंडस्ट्रियल सिटीज पीएम आवास योजना जल जीवन मिशन का मॉडिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन सब मिला के करीब करीब 26 लाख करोड़ के और ये सारी की सारी नींव बन रही है हमारे मध्यम वर्ग के लिए जिनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट.
4: And that is the end of this news bulletin.
7: Hey, Akash Vani Aizol and Ithule Atla, Literary Magazine. tunchum thule hla literary magazine ti huna chuan thu chin hi kan ngai thlanga kan ngai thlak masak tur hi mizo literature le christian na ti thu kan ngai thlanga he thu soi tur hian jh ilrin zwala guest faculty mzu amin hunaron mangdon ani lo ngai thlang u
8: le ngai thatu te chibai vek ule tunchum thule hla huna kan thu pui tur chu mizo literature le christian na ti ani dona azau viu maya kong tam takin a soi theyanga amaro chu tunruma chuna tlang pui zor zor kan soi hung man chau dona ni mizo tenzia le chia kan thiam theina na mi poimo ber mai chu pubuanga jh lorraine le sap upa fw savage kan ti te kha ania ani khan har sana tam tak pal tlang in january ni som pakhat kum sang khazari som ko pali khan mizoram an lo lur ve thei chawa ani kha artington missionary ania christian sa khuwa wang run lut kha ani nge nge a ani mizoram an run lu ma hian thang liana th lewin te cs opit te brojonat saha ten mizo tong le khabu an lo siam to a chumi phula chon tong lam thiam mm heng missionary pahni te hian anma ni horo phula mizo a ob hi anduang ta ni ina langa ti chuan mizoram an run lu ma fe hian heng sap le khabu ma sa te mang hian an lo zir fe to a chuwang chuan an ron lu hi chuan a ob hi an zir tir hmal de mai ni ina langani sikul din hi april ni sang khazare som ko pali ani ya mizoram an ron lu atanga thali na thatir tang in zir tir na an kal pui ngal ani de mai chu ti chuan mizo ji nga ziak le chiar thiam an lo om chou tran ta a missionary pahni te hian zir le chiar mai ba ka sap trung an zir tir ni te po in a langa chuti rual chuan khati hun lai khan sap ina fa mizo la ka fa an nei kan mi hmasa te zing a te po khan chumi sap fa te po chung lo om ve boka mizo trung hi an zir ve reng bok ni na langa an thiam em em maya ti chuan zir lai bu te siam a zir na an kal pui nuwa na hmasa ber an nei chu bible le lin na kha ani ta ni chamchin thwa lukazia kan le lin hun hi pubuanga hian ogas nikhat kum sang khat zariat somkua panga ti in a lo record diama an lelin zo hian British and Foreign Bible Society Londona an thona chu chu kum sang khat zariat somkua pariat khan a lo chuak ta a tirko te thil ti an thon le a sang khat zariat somkua pakua khan a lo chuak ve le a ti chuan kum sang khat zakua som paru khan thuthung thar bu pum pui chu pe fel a lo ni ta a minga kanlalpa le chandam tu isua khrista thuthung thar ti alawni ta ani ti chuan thuthung luinen bible bukum pui chu le linzo ani chuan kumsang kha zakua somnga pakua khan tuna kan pathian le khabu thiang lim hi kanlo nei ta ani ti chuan mizo tonga chan chin bu chuak ma sober chu mizo chan chin lai sui kha ani ya kumsang kha zariat som ko pariat atranga chu ani ya apani na chu mizo le vai chan chin bu ti ani le a a pathum na phei chu sa kholam hoi christian tlang au kumsang kha zakua som pakhata chuak ta kha ania chu chu kumsang kha zakua som paruk khan christian tlang au ti in a min thla ka nia voin thleng hian he chon chin bu hi ala chuak reng ani tin kumsang kha zakua som khan pastor chu teran john bania na le ka bu the pilgrims progress ti kha christian avanam kong zo thu ti in alo lit ling nge nge a kumsang kha zariat som kua pakua kum top lama christian labu phek som thum paru ka cha la som pariat om na kha kan lo nei tareng mai ni ti chuan heng zong zong en hian zia ka mi zo thu le hla in tran na hi christian sa khuwa ani tlat maya chu chuan voin thleng in kan thu le hla mi nol pui na kan ria thiam dan te kan don som dan te po hi ala ngong le ni te po in alanga theater play hemi lem chan kan ti te po hi kan bul tran na su christmas lom na a kumsang kha zakua som pahni kha na lo ni dai maya a hnuwa helem chon hi kumtin kalpui zel ania an hlim pui em em maya mi puin mission venga chutiam chon zo sia mi kap ti te hial bot sai ani ta lem chon bu po a hnu de udaya khami ngong kal zel te po kha ni anga mi zo na abua chu chu publish kan nei ma sak per sangi in leng ti pulal thang fala sai lo ziak te po kha alo chuak tang nge nge ati chuan novel zia kong a hian hoilo pari thon thu kha elbiak lian zia kania ti chuan ale kha bu pan a thon thu bu pan ni na iti te ang lali lal om pui ti kha christian sung konun dan tur christian sa kho injirtir na in ngatlatania chutiang khop chon jia ka kan thu le labul tran na lama khan christian na hian nu ma hi alo nei lian em em ani ti te pokha a ria theita ti chuan sa kho thar chu an hlau ber ram huai la ka ta chan him thei tu ani ti an ria ta wangin kan pile pu te khan an christian kha an bo ru ru imaya sa kho lui chu a bet zo ka khan atang hal pang moya chuchon an ni tin nun phunga thlak dang lam na sa em em ani ti te pokha a hriat theia an hlakal hmang te lo dang lama e tia leng zem zaya ti del del thrin khan mizo a hlaro thapui pui kan nei ang chi te kha mang to lo vin e an zai dan te an hlasak dan te an hlakal phung te thleng khan dang lam na sa em em ani ni ti chon sa kho thar vuan tu te zinga ku ni wang thla tel ve chu sa kho lui zia ni tla tanga ina kha aliana ti chon ko fran mi te khan ku ni wang tha a ko ran mi te han tel te po kha an phal ta lo wa ti chuan leng zem zai kha a re de du ka tu mai leng zem la kha an sangam lo wa ko ran he lai rong bol tu te ria ta khan ko ran upa ho ria lo turin sa kho thar thu kin leng zem zai kha an phua ta an kai le ka kai le zai kan ti te hel kha lo chuwa pha ta ti chuan sa kho lui vuan tu ten puma zai chu sa kho thar ka nan tak am lo manga tiel na la a chuak ta zut maya kum sang ka zako som ko cho wa har na alo thlenga tharau lam har na awang chuan mitam takin sa kho thar an ron zoma kan pung ta hluai maya chu mai ne lovin leng khom zai kan ti mizo hlakal mangin fak na hla tha tak tak kha alo chuak teu mai boka heng leng khom zai te hi mizo te min ti hlutu mizo te na kan nei ro lu de pakhata niya voin thleng in hei chian ni thrat niya a bikin siat niya kho har chung te hnem nan te kan lamanga heti hun lai hian pateya te sizet huala te aril kamla la te reverend thangura te siam liana te za siam te sai nu na te than hera te hovin la thran nem tak kha an lo phua a ti chon leng khom zai chuwa wang lai hi kum sang kha zakwa som ni le sang kha zakwa som li in kar niyangai khania heti la hian lengkhom zai pathian fangna hla mizo ir om chuk a chuam sa em em maya ti chuan heng lengkhom zai kan nei ma dai hian pu buang le sap upai na hlamin siam sak min phu sak min le lin sak ti te po kha oma chu chu mizo tong a kan nei ma sak ber pathian fangna hla kan nei ma sak ber ni a soi chu i suwa wana oma i khovela lo zuk kala ti kha ania kha kha then khatin le lin nin an soya then khatim pubuang le sap upai na min siam sakani e ti te po kha anom boka kan la phodan kal mang hi ain thlak na sahle maya christian hla ani chuan mizo hla rua a mang tolovin tong tuang pa ngai nan phu thlang pui ni te poina langa fakna hla a an mang vak lo ani lengkhom zaya ero moi le nem takin an mang thunga lusun in hnem nan te kan man ber a lo ni ta ti chon thon thu zia konga po kan zia tu masa mithiam te kha christian sa khuaina chia an ni thlang puya christian romans phuwek herlo ma se an ku chuwa ka christian na chuan na satakin a phuara ni ti a hriat theya ka phle thon thu zia chingpui thon thu te chu christian na lo lu ma be chan thon thu ni ma se a ese le ku chuwa thren khata christian na a mu thei thowa chu tiang in zik pui pa te james zo khu ma te ani hnu a thon thu zia tu te zinga phe chuan sa khomi tam tak kha anom so ta thu tuang zia ka te thon thu zia ka te po christian na in mi a phuara zia mu tura tam ta em em mai ani mizo thon thu chuang masa ber dot tu lali thon thu a chuan zu hi thil sual chung ko boina thlen tu ani zia tarlan ani ya a hnuwa voin thleng in mizo thon thu zia ka zu hi khotlang le ko hran mai ni lo chung ko mel ma ber anga tarlan kha ani na sata em em maya tum ma mizo sa kho hruye zu kan man dan ne na khai khin phei chuan he hi sa kho thar christian nei na rin a ti lo thei lo thil poi mo tak mai chu mizo mei che thon thu zia masa te khan christian sa ko be chan hian thon thu le lem chan te an lo ziak deuh zel maya an ni bul tan wang te po aniang voin thleng in mizo mi chia te hian su sual na le khovel lam thil hi thon thu a hian an la ziak koi lo khop maya khovel puma hian christian literature hian mu na lo thu le maya mizo te zing ang nge po mu na lo poi mo zia chu kan soita ka tong khana ria thei ruaka ti chon kum sang ni som ni panga kum tir lama khan mizo christian college chuan mizo christian literature zira zauna ti thupuya mangin international seminar kha abuat sai ta nge nge ya hei hi chunzum zel chi ni te poina langa ti chun research lama po professor KC Van Nga ga khan influence of christianity in mizo fiction tin bulalo tanto boka chu chu researcher dang te poin chunzum clock ni in langa nakina christian literature zero zauna hi alakal zel in arin omani khati zong kha soitur tam takara tum tum kan soi thei te chu ni mai ro se
7: kanngai thak ta kha mizo literature le christian na tinia hunrun mangtu kha jh lrin zwala guest faculty mzu wa mi ani
9: ole tuna chuan zai kanngai tha anga i herdu nang ti le dai lo changte sakilongai thang u

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं FM ZO 100.7। हमारे इस सेगमेंट की शुरुआत हमने बहुत ही सुंदर गाने से कर लिया है, जो है आंखों से। हालांकि हम अपने श्रोताओं की आंखों को नहीं देख सकते, लेकिन हम आपके संदेशों को जरूर पढ़ सकते हैं। आप सभी से जुड़ चुकी है फिर एक और बार आरजे एंजिला। आप सभी को ये गाना पसंद आया होगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो आइए हम आगे बढ़ते। हमारा अगला गाना होगा अपना मोहब्बत, जो कि गुलाम मूवी से ली गई है, और जो पहले हमने गाना सुना था आंखों से तूने क्या किया, वो भी इसी मूवी से ली गई है। और इस गाने को, इस गीत को गाने वाले हैं अलका याग्निक और कुमार सानू।

दोस्तों, आप सभी को ये गाना कैसा लगा? बहुत ही हिट रह चुकी है ये मूवी। मिजोरम में भी इस मूवी के कुछ ऐसे गाने हैं जो हर एक लोगों की जबान में थी, बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस था, जिसको मैं हमारे अगले गाने के लिए मैंने बचा के रखा है। तो आप इंतजार करिएगा, कहीं मत जाइएगा। इससे पहले हम आपके लिए उस अगले गाने को बजाएं, आपके संदेशों को पढ़ेंगे। तीर लल रे मोया, बहुत ही एक्साइटेड है हिंदी गाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे इंजिला लाइलम चिबेले जनिन इदिउती हुन नाम तका हुन इमन थेनान दु सखना कलान चुंग चे इन इला प्ले ले तुर खा पापा रिपु ओमेगा सांग तेया मिंग मोय तेया जेलल जामा विकुंग तेया इतान कलाने ngakte pa bil khotlirin aron tia message dang pani khludeu do aron thlenga he chu kan hla kan play le tour zo a chiar tan kan khe khalange to aiye dosto hum

अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना है बहुत ही फेमस गाना, जिसे बहुत ही मिजो युवाओं ने हर एक गली में गाया है। तो दोस्तों, हम सुनते हैं आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज में आतिकिया खंडाला।

दोस्तों, ये गाना था जी ले, जिसे गाने वाले हैं श्रुति पाठक और नरेश कमाठ। और इस गाने को लिया गया है लक मूवी से। हम आपके संदेशों की ओर अपना रुख मोड़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हितेंद्र दास जी, जो कि असम से है। वो नमस्ते कहते हैं, गुड आफ्टरनून आरजे जी, और अपना नाम और अपने स्टेट का नाम भेजते हैं। बहुत बहुत नमस्कार हितेंद्र दास जी। ओ विकुंग ते आथी आम लुत तो हिंदी इन मैसेज रन थो ना आरजे इंजिला जी। शुभ संध्या। अगला गीत मोया मुनपुई केवाला जेलल जामा और हितेंद्र दास जी को समर्पित है। वाओ अंथियाम एम एम वेकुंग ते तिखा नोन थोन फूला छांग हिंदी सेगमेंट आ हियान जंतुरो मिंग मोई ते अन इंजिला नमस्ते ड्यूटी नामले अरंतिया। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा लक मूवी से ही लिया गया।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी एक और बार फिर से जुड़ चुके हैं एफएम जो 100.7 पर। मैं हूँ एंजिला। आप सभी से दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इस सेगमेंट में हम F4 और बढ़िया संतोष के गाने सुनेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ले चले गाना, जिसे गाने वाले हैं अजय सिन्हा।

दोस्तों, ये गाना था समझो ना, अजय सिन्हा की आवाज में, जिन्हें मिक्कू कह के भी बुलाया जाता है। इससे पहले कि हम अब ये गाना की ओर बढ़े, हम आपके संदेश को पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले भेजते हैं आरजे आरजे प्ले ले तुरखा नंग मातान ले लौंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले कछियान ते वेंग संग संग मी ते तान लल दिन पुया फल कोन वेंग लाई मी इनरों तिया चुआन विकुंग ते अन हिंदी मोई तकिन आरजे एंजिला सुंदर सुंदर गाने बजाते रहिए। अरे वाह, बेशक गन बजाई चर चरंग ओ विकुंग ते लो गाय चर चरला। हितेंद्र दास जी भेजते हैं, उन्होंने सलामी भेजी है फिर से असम से, बहुत बहुत धन्यवाद। पुय पुयन नोयन आरजे कफप्पा पुय पुयन अलो गाय थमे का अतान कलो थंग वे ओ अप आर सी अतान पो ओ अरोंतिया पुई पुई नो तुई दमिन ए पुई पुई अखान लो गाई थलो लो गाई थचर चरो से ओ इतान किनी पुन गन लो लानन या कन नेक्स्ट लाही एल जेट साइलविन आर जे इंजिला हिंदी कथियाम कलो थियाम वे लो हिचु अपोई ए अरोंतिया अपोई लो रे रेंग मिजो ट्रंग कथियाम निया ओ मिजो ट्रंग इन मैसेज इन ऑन ड्रॉप छीन दो निया कल लो छियार छीन आंगा नुआम गंदे थे लुत तो गनिया। आइए दोस्तों, हमारा अगला गाना सुनते हैं तू तो नहीं आई, जिसे गाने वाले हैं लेस्ली लेविस।

तो ना आई। लेस्ली लेविस की बहुत ही मधुर आवाज में। भाई लेस्ली लेविस की गर्लफ्रेंड आए ना आए, लेकिन आपके संदेश आते रहते हैं बराबर, जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी मिलती है, पढ़ने में मजा आता है। हमारा अगला गाना इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना होगा। जाने से पहले ओमेगा सांगतिया का जो मैसेज है उसको मैं पढ़ के जाऊंगी। तुना आरजे ड्यूटी ही तुंगे ओ ओ अफमोसी ए मरंतिया थैंक यू इप्ले ले तुरखा इ पसल फनाउ ते तान ओ इने लो चुआन कन पनी तान नि मे ते ओ रंजे छिन खूब उम कन पनी तान नि चु ओ ओमेगा सांगतिया। दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं एफएम जो 100.7 में, हूं इंजिला और मेरे बाद आने वाले हैं बहुत ही सुंदर आरजे बीजेटी। आप सभी उनके साथ एफबी लाइफ में जुड़ जाइएगा और जो गाना आपको चाहिए आप उसकी फरमाइश भी उनसे रख सकते हैं। इस सेगमेंट को अलविदा हम अशांति मूवी से ली गई वो मेरा गिरना इस गाने के साथ करते हैं। तो आइए दोस्तों हम सुनते हैं वो मेरा गिरना गाना।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी एक और बार फिर से जुड़ चुके हैं एफएम जो 100.7 पर, और मैं आपके साथ हूँ आरजे एंजिला। दोस्तों, ये सेगमेंट है आरजेस चॉइस। हालांकि मैंने कुछ गानों का प्लेलिस्ट बना के रखा है, लेकिन यदि आप सभी को गाना पसंद है और उसकी फरमाइश रखना चाहते तो है तो आप मैसेज करके बता दीजिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को हम पूरा करें। सबसे पहले हम सुनेंगे श्रेया घोषाल की आवाज में ये इश्क, जिसे जब वी मेट मूवी से लिया गया है।

ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, सभी लोग इश्क में पड़कर स्वर्ग की प्राप्ति जैसा आनंद प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं। इसी के साथ आपके संदेशों को पढ़ेंगे हम। गुड बॉय भेजते हैं आरजे एंजिला इनखोम बांग कलो लूट गाल इन लो लमिंग लो मो खुआ अनोन लो ले मई अरोन तियाने कलो हाक चर चर चिया।

lameng sham chame e dar som le chan ve thleng min min pu yang ai gan ti to kha oh good boy ngak te pa in ka la play le tur hi good boy at te vi kung te omega sang te a moya mun pui meng moi te a le katan aron hlana klom emem lut to ke ngak te pa bil ko clear vi kung te an hindi bukin message on to na ma sing hey signal oh हम आपको लाइव कब देख पाएंगे न्यात्रो इंटिक ने मंदो ने मासे कनला जाम शी दे वा दे उल्ले कमो विकुंग ते मिलो लश थियाम शी शाम दोन ने ओ तो नाशी चुन को ओ ही लो लंगाई लशी पोतुला इन नकिन दवा ते मिन कहन इंदाइट बोकंगा ओ इंदाइट कन मुमोसे चा कनन लंग दोन ने ओ अच्छा दोस्तों हमारा अगला गाना होगा अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में जन्म जन्म

है, बहुत बहुत ही फेमस मूवी से जो है दिलवाले। और इस फिल्म में बहुत ही प्रसिद्ध नेता और अभिनेत्री है जो है शाहरुख खान और काजोल। इससे पहले कि हम अपने अगले गाने की ओर बढ़े, हम आपके संदेश को पढ़ेंगे। बहुत ही फनी फनी संदेश आया है। एलजदा एलजद साइलो भेजते हैं। पियंजिला कमेन दान वक पो कशिलो हिंदी लाही चू कलो लाम वक मे दोन ओ एंग पो नि से अमोये अरुनते ओ पुएल जत साइलो कमेन वक अंगाई लो दिखन लो एंजॉय ला लो लाम वक मे रो ओ गुड बोइन कनमिंग दोन चो लोम इन खेल हा पाइन खुआंग रुआ सुरे रो इन बानजा रेल लो नौ पंग चपमिंग कुर अंगदेवनी एतियान्या ट्विन चू कन ख्वा ही लुंग ओय लो रियाउ मेया इंगे मनिन दोन नि ए रुआते खा लौ दौ लौ उला दम लौ नते तम सिया लौ फिम खुर उला इन दम लौ हि कन लाउ निया इन मैसेज ते हि कन हु लौ ते कन लाउ ngoi ti kha sha to na हमारा अगला गाना होगा बिन तेरे, जिसे लिया गया है आई हेट लव स्टोरी। और इस फिल्म के अभिनेता है इमरान खान और अभिनेत्री है सोनम कपूर।

दोस्तों, ये गाना था बिन तेरे, जिसे लिया गया है आई हेट लव स्टोरी मूवी से। और ये गाना आप सभी के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए। आपके मैसेजेस के बिना हम भी अधूरे अधूरे महसूस करते हैं, तो इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी अपना मैसेज बरकरार बनाए रखिएगा। आपके संदेश को पढ़ते दुआती भेजते हैं आरजे एनजी हिंदी कशथ्याम वक लो ना मासे ला लो छंगरू इतिन कशिया मुसुमु सुखा ngai thlai la aron te tere me kan ngai thadon nya lo ngai thachar char la o lal din puya falcon in rg i play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong song tan wholesale in aron tia o तो आइए दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा मुसु मुसु हासी। ये बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, बहुत ही फेमस रह चुकी है। इवन यहाँ मिजोरम में भी सब लोग इसको बहुत पसंद करते थे, करते हैं, और शायद भविष्य में भी लोग इसको ना भूल पाएंगे। ये गाना है मुसु मुसु हासे। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला गाना सुनते हैं।

दोस्तों, ये गाना था मुसु मुसु हा से देवमलाई लाई, और ये कवर सॉन्ग है और ये नेपाली भाषा में गाया गया है। हमारा अगला गाना होगा पहला नशा, और ये गाना लिया गया है बहुत ही हिट मूवी से। मूवी का नाम है जो जीता वही सिकंदर, और इसे गाने वाले हैं श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा। ये गाना इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना होगा। आप सभी सुन रहे हैं FM जो 100.7 में, हुआ जी एंजिला। मेरे बात आएंगे मिजो आरजे आरजे बीजेटी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं फिर दोबारा आप सभी से मिलूंगी ठीक 9:30 बजे। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं हमारा अगला गाना बहारा, श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा की आवाज में।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी फिर एक और बार जुड़ चुके हैं एफएम जो 100.7 पर। मैं हूँ आरजे एंजिला। और दोस्तों, इस सेगमेंट पे हम अलग अलग आर्टिस्ट के गाने सुनने वाले हैं जो कि पंजाब से रिलेट करती हैं, और जिनको थोड़ा पार्टी शार्टी के गाने अच्छे लगते हैं उनके लिए गाना सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम सुनेंगे हुसैन पुरी की आवाज में आनी कोड़ी।

दोस्तों, ये गाना था नी कुड़िए, जो कि एक पंजाबी गाना है, और इसे गाने वाले हैं लंबीर हुसैन पुरिए। क्योंकि अब हमने इस सेगमेंट की शुरुआत एक बहुत ही चटक और पार्टी वाली गाने से शुरू की है, तो हमारा अगला गाना थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, बहुत ही रोमांटिक होगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कयामत से कयामत तक मूवी से गजब का है दिन।

दोस्तों, ये गाना था बहुत ही फेमस, गजब का है दिन, जिसे गाने वाले हैं उदित नारायण और अलका यागनी। और ये गाना लिया गया है कयामत से कयामत तक मूवी से, और इसके अभिनेता और अभिनेत्री हैं आमिर खान और जूही चावला। हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना होगा बहुत बहुत ही रोमांटिक गाना, जो कि 1942 अ लव स्टोरी मूवी से लिया गया है, कुछ ना कहूँ। तो ये दोस्तों, हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

दोस्तों, ये गाना है कुछ ना कहो कुमार सानू की आवाज़ में, और ये गाना लिया गया है लव स्टोरी मूवी से। ये बहुत ही प्रसिद्ध मूवी रही है, न केवल इसकी मूवी बल्कि दोस्तों इसके गाने भी बहुत ही फेमस और हिट रह चुकी है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं हमारे अगले गाने को प्ले करूं, आप सबके मैसेजेस को पढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले वी कुंगतिया भेजते हैं, तू ना वर्ल्ड कप अन खेल चन ले चा ए एफ एम जो ओए ख्लाक पा इन वर्ल्ड कप लमा इन सोर बिंग ले तो ओ अरोन तिया दुआ तीन आर जे इन जी क्लॉन्ग तकिन होला ड्यूटी ले वट ओ कलुंग रोन तिलेंग वे ते ले अरोन तिया ओ दुआ ती कन लप्ले हियान इलुंग ती लेन कबई से रोमांटिक ते उदो बोरुआ तुना कन रुआ लवेल ते मो हेंग तांग इना अजीर एम एम ला करोन प्ले या इदु कबई से अनि मेंग मोय ते एंजिला इतान ले ngak te a pa ta na ron tia kalom em em em meng moi ten miron thlan sak me ngai mi alawa to isi ke saath hum aage badhenge इन मैसेज ते नकिना कन छियार छुन जमंगा कन ला प्ले ले तोर ही कुमार सानू की आवाज में जब किसी की तरफ दिल।

जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, कुमार सानू की बहुत ही मधुर आवाज में हमने सुना है और ये गाना लिया गया है प्यार तो होना ही था मूवी से। हम आपके संदेश को पढ़ते हैं। लल दिन पुया इन आरजे इप्ले तुरखा नंग मातान ले लो आई थवे जोंग जोंग तान आरजे जोंग जोंग तान अरोंटिया। दुर्गेश जी फरमाइश रखते हैं कि हम एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम शुरू करें। दुर्गेश जी, अगर आप किसी गाने की फरमाइश करना चाहते तो आप बेझिझक इस नंबर पर हमेशा ड्रॉप कर दीजिएगा, और जैसे ही आरजे चॉइस या कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके फेवरेट सॉन्ग को बजाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला और आखिरी गाना इस रात के लिए होगा पहला नशा, जिसे जो जीता वही सिकंदर मूवी से लिया गया है, और इसे गाने वाले हैं साधना सरगम और उदित नारायण। इसी के साथ में आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। आप सभी सुन रहे हैं एफएम जो 100.7 में हूँ आरजे एंजिला। आप सभी से हम बहुत जल्द दोबारा फिर मिलेंगे, तो इसी तो गाने के साथ दोस्तों आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहूंगी।